0: एहारा निहार, एहारा मिहार।
1: नवदीय के मेगाहर्ट्ज़ दिवे ही एफएम, अबदुस एम मेगाहर्ट्ज़।

0: मी मरियम रिफ्का रशीद रिफ्का गैड दिवे ही एफएम दिवे ही नाइक
1: नोदी है 1 मेगाहर्ट्ज़ दिवे ही एफएम
2: लवे कफ़ा हो
3: लवे

0: चल कैसा है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए,
2: हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ, आ।
0: अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन
1: पिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप ना जाए।

जब खुदा किसी को बनाता है ना, तो उसमें कुछ खास बात होती है। लेकिन खुदा ने अदा को बनाया, इसीलिए वो खास बात खुदा में है।

0: चोली के पीछे किया है के रिमिक्स वर्जन किया फवनी दिलजीत दोसांझ आईपी सिंह मी गे इतरुं अस्तु लवांग आडु के वेरिंग कम गवा आलका यक्निक आदि इला अरुण के आडु मी लवांग इविकेंदे फिल्म कुरुवा की देहा सब्विस वनाहर के मार्च मोह रिलीज कुरी पेलुं तेरंगे में दुको वरा मकबूल वी फिल्में मी कामयाब फिल्म के लीडुं फेन गेंग उस फवनी थीम बतलाएं ए करीना कपूर खान तब्बू आदि कृति सेनोन मी फिल्मों दिलजीत दोसांझ आदि कॉमेडियन कपिल शर्मा वेस फेनिकेंदे
1: नुवदी है एकेमेगाहर्ट्ज़ दिवेही एफएम

0: आए भी तुझे खुशी मिल जुलवा यारा बीव दिया मुनिया सरी उनी वाहले
1: दिवे ये फिल्म नोदी है के मेगा है
2: दांत का गुड़ कभी ठीक क्या मुत्री से लवा
3: तक के रोए आते स्कूरी है
2: नोदी है के मेगा दिवे ये फिल्म के मैं हाँ नोदी पाई लवा तक को मिस पेरी के
3: लिए कौन फिल्म है नो मैं की हम
1: दिवे हिंगे मोनिफु है फिल्म है देनो मुगा अब दोस
4: रीत अब दोस रीत